0: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 9856202779।
1: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराही 103.8 मेगाहर्ट्ज अंतर मन के आवाज।
2: भाई साहब संजोग तो देखिए, इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है, माही।
3: एकदम बैट बॉल जैसी जोड़ी है, वेट फॉर इट।

0: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज।
1: स्टुडियो टाइम अहिले दिउँसोको 1 बज्यो।
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।
3: Cameras, standby. Reload music.
4: नेपाली चलचित्रका गीत संगीतहरू।

0: आज क्लब तथा आमा समूहलाई आवश्यक भाँडाकुँडाहरू खरिदमा विशेष छुट दिइन्छ भने पसलदेखि 3 किलोमिटर दूरीसम्म होम डेलिभरी समेत गरिन्छ।
1: सम्पर्क सोभी गिफ्ट एन्ड किचन कर्नर दुलेगौडा युनिक डिपार्टमेन्टको 2 घर तल प्रोप्राइटर जीके श्रेष्ठ गणेश पार्वती श्रेष्ठ फोन नम्बर 065414234 र 98171656606।
2: का गीत संस्कृति र पहिचान हाम्रो शान हाम्रो अभियान
3: नेपाली नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको पावन अवसरमा खुल्ला तीज गीत एवं विद्यालय स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता 2083
2: मिति यही भाद्र 29 गते स्थान खैरिनी 4 बजार
3: तीज गीत तर्फ प्रथम पुरस्कार रु 25,000
2: द्वितीय पुरस्कार रु 15,000
3: तृतीय पुरस्कार रु 10,000
2: सान्त्वना पुरस्कार रु 5,000
3: विद्यालय स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता तर्फ प्रथम पुरस्कार रु 7,500
2: द्वितीय पुरस्कार 5,000
3: र तृतीय पुरस्कार रु 3,000
2: मुख्य सहयोगी संस्था सूर्य नेपाल प्राली सेरटार
3: आयोजक शुक्ला गण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य संघ ओडा व्यवस्थापन समिति 6 र 7
2: सह आयोजक शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 7 को कार्यालय
3: सम्पर्क कार्यक्रम संयोजक मन्जु तिमिल सिन्हा 98551 39937
2: सुरेन्द्र श्रेष्ठ 98551 36136
3: रविन्द्र राज पौडेल 98562688
4: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
5: स्टुडियो साइन्चेक अहिले दिउँसोको 3 बज्यो
0: टाइम चेक को साथ में मनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160 95301
4: समय को आवाज समय को आवाज।

0: और तीर्थराज गर्तौला फोन 0635900065 मोबाइल 98166034372।
1: दिस इज रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ट्ज।

0: 103.8
1: अन्तर्मनको आवाज
2: स्टुडियो टाइम
3: अहिले साँझको 5 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98163 95301
4: सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार सुसज्जित हुन पाउने तपाईको अधिकार
5: धोरबाराही हाइलाइट्स को साथ में
6: छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवा को एउटै नाम कृष्ण आर्ट्स एन्ड अफसेट प्रेस दुलेगौड़ा बीपी चोक
5: शिलालेख र छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण काम को लागि सम्झनुहोस् सम्पर्क 98461

0: 4 76 80 681।
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95 301।
2: सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार सुसूचित हुन पाउने तपाईको अधिकार
3: धोरबाराही हाइलाइट्स को साथमा
4: छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवाको एउटै नाम कृष्ण आर्ट्स एन्ड अफसेट प्रेस दुलेगौडा बीपी चोक
3: शिलालेख र छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् सम्पर्क

0: Station 1. Studio Sanchez.
1: Aile, Vienna ko pass bajyo.
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठ फेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160 95301

0: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 9856202779।
1: हार्दिक शुभकामना। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक एवं संस्थापक पैगम्बर हजरत मोहम्मद को 1501 जन्मोत्सव एवं मोहम्मद जयंती को सुखद अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएका समस्त इस्लाम धर्मावलम्बी सहित संपूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजू भाई तथा दीदी बहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। धार्मिक विविधताका बीच सामूहिक एकता कायम राखौं, आपसी सम्मानलाई प्रवर्धन गरौं। अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन मिया एवं नेपाल मुस्लिम सेवा समिति शुक्ला गण्डकी पाँच गोलछिना परिवार।
2: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोर बालाही 103.8 मेगाहर्ज।
3: संकेत सधैं बिहानीले गर्छ, त्यसैले तपाईको बिहान शुभ रहोस्।